0: चल गए रहा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए
1: चल
0: गए
2: beda rasa satu rasa sukun spesial ba.